कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन हर

भई चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए।

बनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी

असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मान रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह।

हर के जान सतगुर सतपुरखा बिना करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोह कौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई।

मिले तब तस मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर्ष नाम न पाया ते पाहीन जमपास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास, तन तन सत संगत जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्त है उद्यम, जा आहार हर जीव परया।

तिनका पौ सब गुआसी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंत जी।

नित नित जीड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे, ते दाते कमल सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देव सज्जन असीसड़िया, जो होवे सह सो मेल।

आओ सहस्ताव नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामय।

गए बसन सुहेला औद कटै दिन सरहणारे मन गुरमिल का सुवारे रहाओ इव संसार विकार संसेम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे इव रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे बौर न होएगो पेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दा

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आजा पावन पीन अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खेलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणंदिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

बल माटी पया मन माया मोहे मनूर औगुण फिर लागू पये पूर्व जावे तूर बिन शब्दे परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझया मर जन्मे आवे जाए रहाओ तन सूचा सो आखिए जिसमें साचा नाव पय सच राती देहोरी जेवा सच सुवाओ सच्ची नजर निहालिए बौड़ न पावे ताओ साचे ते पवना भया पवने ते जल होए जलते ते पवन साजया घड़ घड़ जोत समोए निर्मल मैला नाथिए सब दरते पद होए यो मन साज संतोखिया नदर करे तसमाघ पंच भूत सज पैरते जोत सची मन माघ नानक अवगुण विसरे गुर राखे पद तागे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार एक आवे एक जावही पूर परे अहंकार मन हट मत्ती बूढ़ी है गुरमुख सच सो तार गुरबिन क्यों तरिये सुख होए ज्यों भावे त्यों राख तू मैं अवरना दूजा कोए रहाओ आगे देखो डाओ जलै पाछे हरेओ अंगूर जिसते उपजे तिसते बिनसै घड़ घड़ सच भरपूर आपे मेल मिलावही ताचे महल हदूर साहे साहे तुस्तमला कदे राम सारे ओ ज्यो ज्यो साहब मन से गुरमुख अमृत पेयो मन तन ते रातू तनी गर्भ निवार समेयो जे त्यो जग त्यो पाया तिर पवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार घड़ घड़ जोत निरंतरी बूझे गुरमुख सार गुरमुख जिन्नी जाने।

पोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत गए, खोड़ ना सीज सकोए, खोटे खोड़ कमावना आए गया पद खोए। नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा, हर जब लहा अगला निरपो हर मन माह।

सुनना पौन की बाणी, यो मन रत्ता माया, खसम की नदर दिले पसंदे, जिनी कर एक ते आया, ई का रखे पंज कर साथी, नाओ शैतान मत कट जाई, नान के आख राहे पै चलना, माल तन कितकू संजया ही, श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जन

दूर आपे ही आपे मंज म्यानो आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहां करे मनमान देमन हारे कै हथ दान पावे दे न देई सोए कीते कै कह क्या होए आपे सच पावे तिस

ते से निर्मले हौ सदबरे हारे जास फिर दे जिन के हर वसे तेत कट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरमुख रहे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट बसे भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखे सदा हदूर जेन गुण तेन सद मन वसे अवगुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया घर सोए अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओ सदा

अमृत सच्चा नाम है, तैना कछु न जाए, पीवत हू परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

भी या जब करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है, सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे

की चौजुगी सच्चो सत सुनाए, हमें मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए। इनको मैल हदूर है जो सत्य रखे लिवलाए, नदरी नाम ते आइये विण कर्मा पाया ना जाए। पूरे भाग सतसंगत लह सगुर भेटे जिसे आए, अनदिन ना मेर त्या दुख बिख्या विचो जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम सुमाए, श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन। जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकाइन। हर राख्या और तार सच्ची बाणी सच मान, सच्चे नाल प्यार मन मेरे होमे मैल पर नाल। हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार, हर हाव सच्चे शब्द मन मोहया। प्रभ आपे लहे मिलाए, अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत सुमाए। ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सदगुर बूझ न पाए, जिनको पूर्व लिखया सदगुर भेटिया तिन आए। विण नावे सब डूमणी दूजे पाए खुवाए, तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए। परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए, नदर करे प्रभ अपनी आपे लहे मिलाए। सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पे आ जाए, पापो पाप कमाउ दे पापे पजे पचाए। तो प्रण नदर न आवई मन मुख बूझ न पाए, जिस वे खाले सो ही वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई, होमे पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन वसे नामे रहे सुमाए, गुर

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़ है, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा, अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मनवसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब सीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जा आपे नदर करे, छे जन शब्द सोने तिस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना जेदा अंत न पारावार, धड़कड़े आपे हुमस हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हौमे विचों कोय, सातन नावे बारी अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच लगा सच्चे नाय तृप्त होय, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा तोय, आपे मेल मिलाएंदा फिर वे छोड़ा ना होय, नानक गुरसाला ही अपना जिद्दू पाई प्रसोय। श्री राग महला तीजा, सुन सुन काम घेलिए, क्या चले बाल उड़ाए, अपना फिर ना पछाण ही क्या वो दे से जाए, जिन्नी सखी कंत पछाणिया हों तिनके लागो पाए, तिन ही जैसी थी रहा सत संगत मेल मलाए, मुंदे कूड़ मुठी कूड़ियार, फिर प्रसाचा सोना पाइये गुर विचार, अरहाओ मानमुख कंत ना पछाणई, इनको रहन विखाए, गर्भ अटिया तृष्णा जले, दुख पावे दूजे पाए, शब्द तिया सुहागणी तिन विचो होमे जाए, सदा पिर रावे अपना तिना सुखे सुख विखाए, ज्ञान विघूणी पिर मुतिया पिर मन पाया जाए, अज्ञान मत्ती अंधेर है बिर पिर देखे भुख न जाए, आप हो मिलो सहेलियो मैं पिर देव मिलाए, पूरे भाग सतगुर मिले पिर पाया सच समाए, से सैया सुहागणी।

मुक्ते से ही पालिए जे सच्चा नाम समाल जो कर छड गवावना सो लगा मन मागे जिथे जाए तुद वर्तना जिसकी चिंता नागे हाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पागे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए प्यारे कुंडा पालक आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाह डुबदा लया कढ़ाए श्री राग महला पंजवां तड़ी मोहत का पौना ताज सवारण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उड़ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंधी पागे जे हो भी पूर बिल गया ता गुरका भजन कमागे हरहाओ हरी नाही नै डडरी पक्की वड्डन हार लैले दात पोतया लावे कर तैयार जा हो।

संता संगत मानस प्रीतम भग सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इस नाम।

बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते होए विनाश हरहाओ। साहिब मेरा निर्मल इस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। सतगुर दाता नाम का पूरा जिस पंडा।

क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त से सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तित्तर वसे सोहेलड़ी

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए एना, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, दूते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तुम वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

गुण गाओ, सच खाना सच पहनना, सच्चे सच्चा नाओ, साध ग्रासना मिसर सबल मूर्त गुरे आप, गुर जेवड़ अवर ना दिसई, आड़ पैर ते जाप, नदर करे ता पाई है, सच नाम गुण तास, गुर परमेश्वर एक है, समय रहया सुमाए, जिनको पूर्व लिखया, सेई नाम त्याय, नानक गुर शरणागति, मरे न आवे जाए, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला, कार पहला, अष्टपदियां, आख आख मन वामना, ज्यो ज्यो जापे वाए, जिस नु वाए सुनाई है, सो केवड किताए, आखन वाले जेतड़े, सब आख रहे लिवलाए, बाबा अल्लो अगमे पार, पाकी नाई पागताए, सच्चा परवदगार, अरहाओ, तेरा हुक्म न जापी केतड़ा, लिखना जाने कोए, जे सो सायर में लिए, तिलना पुजावे रोए, कीमत केने ना पाईया, साव सुन सुन आखे सोए, पीर पे कंबर सालक साधक, सोदे और शहीद, शेख मुसाइक काजी मुल्ला, दर दरवेश रसीद, बरकत तिनको अगली, बढ़ दे रैन दरूद, पुछ न साजे पुछ न टाहे, पुछ न दे वेले, अपनी कुदरत आपे जाने, आपे करण करे, सब ना वेखे नदर कर, जय पावे तय दे, थावा नाम ना जानिए, नावा केवड़ नाओ, जिते वसे मेरा पातशाह हो, तो केवड़ गए ताओ, अंबड़ कोई न सकई, हों किसनु पुछन जाओ, वरना वरना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हत वड़े आईया, जय पावे तय दे, हुक्म सुवा

पाए, पुर राखे से उबरे हते स्यों निवलाए। हरजी सबत पछाणीए साजरते गुरवाक, तेत तन मैल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन ना वेख्या साक, जिन्नी सच पछाणिया से सुगिए जू चार। हो मैं तिसना मार के सच रखिया उर तार, जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। सचो वखर ला दिए लाभ सदा सच रास, साची दर गए बैसई भगत सची अरदास।

आओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हों तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार, सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर पाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ।

तू है साजन तू सुजान तू आपे मिलनहार गुरसब दी सालाई है अंत न पारावार तिथे काल न अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार हुक्मी सबे उपजे हुक्मी कार कुमागे हुक्मी काले वस है हुक्मी साच सुमागे नांग जोत पावे सोती है ये ना जनता वस किश नागे श्री राग महल्ला पहला मन झूठे तन झूठ गए जेवा झूठी होए मुख झूठे झूठ बोलना।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तिर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जी में

फल मिले। कल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे, गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे, खिन आवे खिन जाए, तब पछाणे रब रखे, ना ते काल संताए, साहेब अतुल ना तोलिए, कस न पाया जाए, वाह पारी बन जा रहे हैं, आए वजो लखाए, तारक मावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तुमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है,

साचो साहिब सेवीए गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाईए पए किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटीए लिखिया लेख रजाए बेघर नाम ना छुटीए गुरमत मिले मिलाए तिस दिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हो में ममता जल बलो लोभ जलो अवमान।

रवरय बक्से पवित पंडार अरहाओ रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अलको तो सुखणो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी ना जीवई प्रव जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थर हरी आवले एक बूंद ना पवी के कर मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वड्याई दे अरे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमु सोजी ना पवे गुरमु सदा हजूर मनमुख गणत गणामणि तरता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तेर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आ पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आ पछाणिए अवर के करे कराए मिले आका क्या मेलिए शब्द मिले पति आए मनमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा काए नानक दर कर

तन निर्मलो गुरदाद करे प्रसोए अरहाओ राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मुनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार आप चिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग नारी देख विगासीए नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित ले वित जामुन सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचिए धर्म वस्त सुधाए मन मुखो में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इव तनो अग्नि पास पिराण पावने के वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगिए मुआरा लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम हूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए जो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिये सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए बिन जल कमसो नाथिए बिन जल

सदगुर सेव गुण धान पाया तिसकी कीम न पाई प्रभ सख हर जीओ मेरा अंते हुए सखाई पेयड़े जग जीवन दाता मानमुख पत गवाई बिन सदगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई हर सुख दाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई पेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करे दिन राती होमे मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवे सच्चे सच सुमाया आपे नदर करे पाओ लाए गुर सबदी विचार सदगुर सेवे सहज उपजे होमे तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उर तार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निधान हर मन वसे होमे दुख सब जाए।

ये सड़कुर से मनुष्य उबरे हर से ती लेवलाए मान रे गुरमुख नाम त्याए और पूर्व करते लिखया इना गुरमत नाम सुमाए रहाओ वे सड़कुर प्रतीत ना आवई नाम न लागो पाओ सुपने सुख ना पावई दुख में सवै सुमाए ये हर हर कीचे बहुत लोची है कीर्तना मेटिया जाए हर का पाणा भगती मनिया से भगत पए दरताए गुर सब दड़ावे रंग स्यों फिर कृपा लया ना जाए जे सो अमृत नीरी है ती बिख पल लागे ताए से जन सच्चे निर्मल है जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कुमाम दे बिख हो में तज विकार मन हठ किते उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र सोधो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कुमाए हर का नाम निधान है जिस अंत न पारावार गुरमुख से ही सोंदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोए गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगे गुर पाए हर रस पीवे सहज रहे उड़े न आवे जाए निर्तर अवस्था पाया हर हर नाम सुमा

क्या माया कर्म कमाए तो सुख ए जीव बद है हम में कर्म कमाए पिन शब्दे परम न चूकई ना विचों हम में जाए पिन प्रीति भगत न होवई फिर शब्दे थाए न पाए शब्दे हम में मारिए माया का प्रम जाए नाम पदार्थ पाइए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वछल हर मन मसया सहज मिलया प्रसोए नानक शब्दे हरसा लाइए कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभु कीना अपे परम पुलाए मनम कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसे मन आए।

सतगुर मिले फेर ना पवे, जन्म मरण दुख जाए, ऊरे शब्द सब सोझी होई, हर नामे रहे सुमाए, मन मेरे सतगुर से चित लाए, निर्मल नाम सद नव तनो आप वसे मन आए, अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई, क्यों रखे त्यों रहना, कुर के शब्द जीवित मरे, गुरमुख पवजल तरना, वड़े भाग नाव पाईए, गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन मसिया प्रव करता, तैजे रहा सुमाई, एक ना मनमुख शब्द ना पावे, बंधन बंद पवाया, लख चौरासी फिर आवे, बिरथा जन्म गवाया, भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते, अनदिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम सुमाते, गुरमुख अमृत बाणी बोल है, तब आत्म राम पछाणी, एक कोसे मन एक अराध है, गुरमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है, गुरमुख वस्ते मन आए, सदा रंग राते सच स्यों,

भगवती रहत जुगता, जोगी कहत मुगता, तपसी तपह राता, मोनी मोन तारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नवे प्रकार, पंडित वेद पुकार, गृहस्थी गृहस्थ रमहता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आ परसा, एक लूक न देवह दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, ताट न किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो पगता, सागल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुरचरण पराता, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, श्री राग मोहल्ला पहला कार तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया, थुर्ग मछ पयाल जियो, होंवारी होंवारण कुर्बान तेरे नाव नो हरहाओ, तू संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, तर कुदरत पासा टाल जियो, प्रगट पहारे जापदा, सब नावे नू परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, तब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ पल जाइए, जित मिले परमगत पाइए, सुर नर मुनदन लोच दे, तो सतगुर दिया बुझाए जियो, सतसंगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम खानिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, यो जगत परम भुलाया, आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागणी जिन सय नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ए करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा।

तान चितवै तान संचय बन जा रहा मित्र। हर नामा हर ना सुमाल, हर नामा हर घर कदे ना सुमाले, जे होवे अंत सुखाई। यो तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनु कृपा करे गुरु मिले, सो हर हर नाम सुमाल। कहो नानक तीजे पैरे प्राणी, से जाय मिले हर नाल। चौथे पैरे रहण के वन जा रहा मित्र, हर चलन वेला आंदी। कर सेव पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र, सब चली रहण वेखांदी। हर सेव खिन खिन टिल मूल न करे हो, चित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर सेती सदमान हो रलिया, जन्म मरण दुख खोवो। गुर सतगुरु स्वामी भेद न जानो, जित मिलहर भगत सुखांदी। तो नानक प्राणी चौथे पैरे, सफल हो रहण भगतां दी। श्री राग महला पंजवां, पहले पैरे रहण केवन जा रहा मित्र। तार पाए ता उदरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र। तर मोलत कर्म कमाहे, मोलत कर दी नी कर्म कमाने। जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुध बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया। कर्म सुकर्म कराए आपे,

मेर साध संगत निध मानिया सर्व सो सुख आनंद कन प्यारे हर तनम अंतर सीवते एक तिलनी विस्तरे प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखना जो तो किन्ने अपने तिना कु मिले हो गए आपे ही आप मोयो जस नानक आप सुने हो गए शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोग सब जोया भगत लखेण तरवस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगल हो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्रा प्यारे संसार सागर नहीं पोया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान दो।

जो मिलया हर दीवान स्यों, सो सबनी दीवानी मिलया, जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखुरु, ओस कै मुह डिठ सब पापी तरिया, ओस अंतर नाम निधान है, नामो परवरिया, नाओ पूजिए नाओ मनिए, नाए केलवक सब गिरिया, जिनी नाम त्याया एक मान एक चित, से अस्थिर जग रहया। श्लोक महला तीजा, आत्मा देव पूजिए गुर के सह सुपाए, आत्मे नू आत्मे दी प्रतीत होए, ता कर ही परचा पाए, आत्मा अडोल ना डोलई गुर के पाए सुपाए, गुर वेण सहज ना आवई, लोभ मैल ना विचों जाए, खेन पाल हर ना मन वसे, तब अड़सर तीर्थ नहाए, सच्चे मैल ना लगई मन लागे दूजे पाए, धोती मूल ना उतरे जे अड़सर तीर्थ नहाए, मन मुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कुमाए, नानक मैला उजल तांथिए ज सतगुर माए सुमाए। महला तीजा, मनमुख लोग समझाइए कदो समझाया जाए, मनमुख रलाया ना रले पए किरत फराए, लिव ताज दो राह है हुक्मी कार कुमाए, गुरमुख अपना मन मारिया सबक सवट्टी लाए, मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत, मन ही मंज सुमाए, मन जो इसे सोले सच्चे सब सो पाए, अमृत नाम सद पुंचिए गुरमुख कार कुमाए, विण मने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए, मन मुखी मन हड़हारिया कूड़क सत कुमाए, गुर प्रसादी मन जने हर सेती लिव लाए, नानक गुरमुख सच कमावे मनमुख आवे जाए, पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई, हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हिरदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, गुर बचनी से जे चाखी ते पया प्रकाश मिटिया अंधियारा, जो सूरज रहन के राखी अदिष्ट गोचर अलख निरंजन, तो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा, सतगुर से वे अपना सो सिर लेखे लाए, विचो आप गुवाए कै रहन सच लिव लाए, सतगुर जिनी ना सेवे हो तिना बिरथा जन्म गवाए, नानक जोत पावे सो करे ऐना किशु ना जाए। महला तीजा, मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कुमाए, दूजे पाए अज्ञानी पूज दे दरगह मिले सजाए, आत्मा देव पूजिए बिन सतगुर बूझ न पाए, जब तब संजम भाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए, नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर भावे सो थाए पाए, पौड़ी हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती, हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब केलवख पाप लगाती, हर हर नाम जपो मन मेरे जित दाल दे दुख भुख सब लहे जाती, हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती, जित मुख पाग लिखिया तुर साचे हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा, सतगुरु जिनी ना सेवेओ शब्द न कीतो विचार, अंतर ज्ञान न आयो मृतक है संसार, लख चौरासी फेर पया मर जमे होए कुवार, सतगुर की सेवा सो करे जिसनु आप कराए सोए, सतगुर विच नाम निधान है धर्म प्राप्त होए, साचर पे गुर शब्द स्यो तिन सच्ची सदा लिव होए, नानक जिसनु मेले ना विछड़े सह सुमावे सोए। महला तीजा, सो भगवती जो भगवंत जाने गुर प्रसादी आप शाणे, तापत राखे इकत कर आने जीवत मरे हर नाम खाने, ऐसा भगवती उत्तम होए नानक सच समावे सोए। महला तीजा, अंतर कपट भगवती खाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए बार मल धोवे मन की झूठ न जाए, सत संग स्यो बाद रचाए अन दिन दुखिया दूजे पाए रचाए, हर नाम न चेत बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मिटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए, पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से करन स्वाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही, सतगुर जिनी त्याया तेन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही, तेन ऐथे ओथे मुख उजले हर दरगह पै दे जाही। श्लोक महला दूजा, जो सिर साई नानवे सो सिर दीजे डार,
ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੁੰਡੋਂ ਪੁੱਲੀ ਨਾਨਕਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮੂਈ ਆਸ, ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਪੋਲੜੈ ਗੰਦੇ ਡੂੰਪੀ ਆਸ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨਾਵੇ ਅੱਗੇ ਆਣਨੇ ਵਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁਰੂਪ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਤਿਰਕੇ ਪਾਣੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੀਏ ਜੋ

मेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, सदा सदा तू है सुखदाई, निब निब लागा तेरी पाई, तारक मावा जित पावा, जां तू दे दयाला जियो, प्रभु तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे पै कुंट साई, तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नांग सो पाया, आड़ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो, माझ महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया, जल थल महियल दहत वरसाया, सांध पई बूझी सब तृष्णा, अंध पया सब ठाई जियो, सुख दाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रतपाले।

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावन यहाँ रखाओ तन मन खोजे ता नाओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

परम पोलानी अग्ञानी अंधा मगना जाने फेर फेर आमन जामने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमे मेरा ठाकुर खाया गुर साखी मिटिया अंधियारा वज्र कपाट खुलामने आ होमे मार मन मसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ध्यावण आ जीवन मरना सब तुदे ताई जिस बख्शे ते दे वडियाई नानक नाम ध्याए सदा तू जमन मरण सवारण आ माझ महला तीजा मेरा परम निर्मल अगम्य पारा बिन तकड़ी तो लै संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कै गुणी समावण आ हौ वारी जीव वारी हर का नाम मन वसावण आ जो सच लागे से अनदन जागे दर सच्चे सोभा पावण आ रहाओ आ सुने ते आपे वेखै जिसनु नदर करे सोई जन लेखै आपे लाए लै सो लागे गुरमुख सच कमावण आ जिस आप भुलाए सो किथे खत पाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी पूरे कर्म मलामणे आ कई अड़े तन दिन सुती तंत विसारी अवगुण मुती अन दिन सदा फिरे बिल लांदी बिन तिर नींद ना पावणे आ कई अड़े सुखदाता जाता होमे मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा तिरावे सच सिगार बनावणे आ लख 84 जी उपाय जिसनु नदर करे।

माया मुई घर चेते नाही, जम पुर बद्दा दुख सराही, अन्ना बोला किसे नजर न आवे, मनमुख पाप चामणिया, एक करां गराते जो तुद आप लिवलाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुखदा।

ले नागी गुर पूरे पाग मिलावने गोद प्रगट तू सब नहीं ताई गुर प्रसादी मेरे सो जी पाई नानक नाम सलाय सदा तू गुरमुख मन मसामने माज मगला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे होमे मार बंधन सब तोड़े गुरमुख सब सुहावने हो मारी जुवारी हर घर नाम सुहावने गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से तीचे तलावने रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रमाण आर जा न छीजे सब पछाण गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच सुमावने गुरमुख हर दर सोभा पाए गुरमुख विचो आप गवाए आप तरे पुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारने गुरमुख दुख कदे न लगे शरीर गुरमुख होमे चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहे सुमावने गुरमुख नाम मिले बड़ियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावने गुरमुख अनदन शब्द राता गुरमुख जुग चारे गए जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावने बाज गुरु है अंध अंधारा जमकाल ग्रठे करे पुकारा अंधे रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा मैं दुख पावने गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हिरदे बुठा आप आए नानक नाम मिले बड़ियाई पूरे गुरते पावने माज मोहल्ला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सब दिखाए सतगुर पूरा आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बंत बनावने हो वारी जीव वारी हर सच्चे के गुण गावने बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज सुमावने रखाओ तू आपे सो है आपे जग मोह है तू आपे नदरी जगत परोव है तू आपे दुख सुख देवे करते गुरमुख कर देखावने आपे करता करे कराए आपे सब गुरु मन मसाए सब दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आग सुनावने आपे करता आपे भुगता बंधन तोड़े सदा गए मुक्ता सदा मुक्त आपे गए सच्चा आपे अलख लखा।

दिन रहन जे प्रभु कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत अराधन ससद सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अनजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसरे सो हरिया हो वै जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर जप जप जीवान आओ हर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राखे त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिए नान क्यों सुआओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद हरड़ा सुया की तुनी गाम।

मनहार तोड़ राही तो भगत पंडार किया गर्भ न आवे रास जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जीवाले बख्श मिलाए जो भावी त्यों नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे भरोसे तेरे तन मैं मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अनपे विसरे नाम सुमाया क्या डरिए डर डरे सुमाना पूरे गुर के सुख पछाना रखाओ जिस नर राम हृदय गारात सह सुपाई मिले सबास जाय सवारे सांझ बयाल एत उत मन मुख बंद काल आयन सराम हृदय से पूरे नानक राम मिले प्रम दूरे गौड़ी महला पहला जन्म रे त्रैगुण हितकार चारे वेद कथे आकार तीन अवस्था कहे वख्यान तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान राम पदगुर सेवा तरना बौड़ जन्म न होए गए मरना अरहाओ चार पदार्थ कैसा कोई सिमरता शास्त्र पंडित मुख सोई बेन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत घर पाया जाके हृदय वस्या घर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमुख पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहे निराश बुझाया दीना नाथ सर्वसुदाता नान कर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रहे सुखाली बाजी यो संसारो लभ लोभ मुझ कूड़ कुमावे बहुत उठावे भारो तू काया मैं रुल दी देखी ज्यो तर ऊपर शारो सुन सुन सिख मारी सुकृत कीता रसी मेरे जीड़े बोड़ न आवे वारी रहाओ हौ तुझे अखा मेरी काया तू सुन सिख मारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी ला इतबारी वेल पराई जो है जीड़े करे चोरी बुरियारी हाँ चलिया तू पिछे रही है छुट्टड़ होई है नारी तू काया रही गे सुपनंतर तुझ क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जाकश लिया तामन पला पाया हलतना शोभा पलतना ठोई अहला जन्म गवाया हो खरीद हुए ली होई बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई रहाओ ताजी तुर्की सुना रूपा कपड़ के रे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पए गुवारा पूजा मेवा मैं सब कुछ चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीब दीवार उसारी पसमंदर की टेरी संचे संच न दे किसी अंत जाने सा मेरी सोए लंका सोए नुमाड़ी संपे किसे ना केरी सुन मूर्ख मन अजाना हो तसे का पाना अरहाओ साहु हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जा रहे जियो पिंड सब रात से की मारा पे जी वाले गौड़ी चेती महला पहला आवर पंच हम एक जना क्यों रखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना श्री राम नामा उच्चर मना आगे जामदार बिखम कनार गाओ उसार मडोली रखे द्वारा पीतर बैठी साथना अमृत केल करे न कामन अब लुटे सो पंच जना ताय मडोली लूटा देवरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया पा गए से पंच जना कामन लोयड़े सोना रूपा मित्र लुड़ेन सुखा दाता नानक पाप करे तन कारण जासी जमपुर बाधाता गौड़ी चेती महला पहला मुंदरा ते कड़ पीत मुंदरा ताया की जे खिंता था पंच चेले वस की जे रावल योमन की जे डंडा था जो जुगत ए पास था एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रगाओ मूड मुड़ाए जे गुर पाई गए हम गुर की नी गंगा था तेरे पवन तारनगर सुवामी एक न चेतस अंधा था कर पटम गली मन लावस संसा मूल न जावसता एक चरणी जे चलावे लभ लोक की तापसता जबस निरंजन रज समाना काहे बोले जोगी कपट कणा रखाओ काया कमली हंस एयाना मेरी मेरी करत बेहानी ता प्रणत नानक नांगी दज फिर पाछे पछतानी ता गौड़ी चेती महला पहला औगत मंत्र मूल मन एक जे कर दृढ़ चित की जय रे
जन्म जन्म के पाप कर्म के कट नजारा लीजे रे, मन एको साहेब भाई रे, तेरे तीन गुणा सुसार समावे, लखना लखना जाई रे, हरहाओ सकर खंड माया तन मीठी, हम तो पंड उचाई रे, रात अनेरी सू सुनाही, हर टूक समूसा पाई रे, मन मु करे तेदा दुख लागे, गुरमुख मिले वडाई रे, तोदन किया सोई होआ, कीर्तन मिटिया जाई रे, सोबर परे न होवे ऊने, जो राते रंग लाई रे, इनकी पंख होवे जे नानक, तो मूड़ा किश पाई रे, गौड़ी चेती महला पहला, कत की माई बाप कत केरा, हिदू थावो खमे आए, अग्न बिम जल पीतर निपजे, काहे कम उपाय, मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी ओ गुण मेरे, रघाओ केते रुख बिखम चीने, केते पशु उपाय, केते नाग कुली मै आए, केते पंख उड़ाए, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगू देखे पिछू देखे, तुते कांश पावे, तड़ तीर्थ हम नखन देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा, काटगी मह बरजारा, जेता समुंद सागर नीर परया, केते औगुण हमारे, दया करो शिमेर ओ पावो, डुबदे पत्थर तारे, जीड़ा अग्न बराबर तप है, कितर वगे काती, परम तनान कुम पछाण, सुख होवे दिन राती, गौड़ी बैरागण महला पहला, रैण गवाई सोए कै, दिस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म गए, कौडी बदले जाए, नाम ना जानिया राम का, मूड़े फिर पाशे पछताए रे, रहाओ, अनता तन तरणी तरे, अंत न चाया जाए, अंत को चान जो गए, ते आए अंत गवाए, आपन ली आजे मिले, ता सब को पागट होए, कर्मा ऊपर निबड़े, जे लोचे सब कोए, नान करना जिन किया, तोई सार करे, हुक्मन जापी खसम का, किसे वडाई दे, गौड़ी बैरा गण महला पहला, हरणी हुआ बनबसा, कंद मूल चुनकाओ, गुरप्रसादी मेरा सौ मिले, वार बार हो जाओ जियो, मैं बंजारन राम की, तेरा नाम अखरवा पार जी रहाओ, पोकल होवा अंबसा, सह शब्द बीचार, सह सुपाए मेरा सौ मिले, दर्शन रूप अपार, मछली होवा जलबसा, जी जन संसार, उरवार पार मेरा सौ बसे, हाँ मिलोगी बाप सार, नागन होवा तरबसा, शब्द वसे पहु जाए, नानक सदा सुहागनी, जिन ज्योति जो सुमाए, गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्ति आखिए, करते का होए बिचारो, हित कर गावो सोयला, सिबरो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरपौ का सोयला, हौ मारी जाओ, जित सोयले सदा सुख होए रखाओ, नित ने जीड़े सुमालियन, देखेगा देवनगार, तेरे दल ने कीमत ना पवे, ते दाते कम सुमार, संबत सहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, त्यो सज्जन आसीसड़िया, जो होवे सह स्यो मेल, कर कर एहो पहुंचा, त्रे नित पवन, सतन गारा सुन गए, नानक से दे आवन, अराग गौड़ी ग्वारेरी, महला तीजा, चौप दे, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, गुर मिले, हर मेला होई, आपे मेल मिलावे सोई, मेरा प्रभ सब ने आपे जाने, हुक्मे मिले, शब्द पछाणे, सतगुर कै पय प्रम पो जाए, हय राचे सच रंग सुमाए, रहाओ, गुर मिले, हर मन वसे सुपाए, मेरा प्रभारा कीमत नहीं पाए, सब सलाए अंत न पारा वार, मेरा प्रभक से बख्शनहार, गुर मिले, सा मतबुद होए, मन निर्मल वसे सच सोए, साज वसे साची सबकार, उत्तम करनी शब्द विचार, गुरते साची सेवा होए, गुरमुख ना पछाणे कोए, जीवे दाता देवनगार, नानकर नामे लगे प्यार, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, गुरते ज्ञान पाए जन कोए, गुरते बूझे सीजे सोए, गुरते सह सज विचार, गुरते पाए मुक्त द्वार, पूरे भाग मिले गुर आए, साचे सहज सा सुमाए, हरहाओ गुर मिले, तृष्णा अग्न बुझाए, गुरते साथ वसे मन आए,
ਕੁਰਤੇ ਪਵਿੱਤ ਪਾਮ ਸੁਚ ਹੋਏ, ਕੁਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਬਿਨਾਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਪਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦਾਤਾ ਇਕ ਸੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਸੁਮਾਵਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋਥਾਓ ਸੱਚ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਸਸ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੇ, ਤਬਕ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਆਪੇ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੈਸ ਸੁਥਾਏ ਰਖਾਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੇਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਹਸਨਾ ਚਾਖੇ ਫੀਕਾ ਆਲਾਏ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਦੁਖੀਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਰਸਨ ਹਰ ਚਾਖਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ। ਤਾਤੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ। ਨਾਮ ਸੁਮਾਵੇ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਹੋਏ, ਉਂਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਭਾਂਡਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਸ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨ ਸਾਧਨਾ ਪਾਏ। ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਗਾਵੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਗਾਵਣ ਗਾਵੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ। ਮਨ ਤਾ ਰਾਤਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਹਰਹਾਓ। ਇਕ ਗਾਵੇ ਇਕ ਭਗਤ ਕਰੇਗੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਅਸਨੇਹੇ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸਦਾ ਔਰ ਤਾਰ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਮੂਰਖੀ ਆਪ ਜਿਣਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸੋਏ। ਭਗਤ ਵਚਨ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋਏ, ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖੋਏ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਚਾ ਸਬਦ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਤਾਤ ਮਰ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਮੂਹੇ ਕੈਸੇ ਘਰ ਪਾਏ, ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਈ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕੁਮਾਰ, ਤਾਂ ਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਗਲ ਮਿਗਦਾਰ, ਗੁਰ ਅੰਕਸਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲਣ ਹਾਰ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਹਰਦੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਉ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਜੋਤ ਰੱਖਿਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦਨ ਵਿਛੜੇ ਸਭ ਸੁਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਉਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਰਮ ਫੁਲਾਨਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੇ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਨਾ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਂ ਦਮੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਰਖਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਉਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸਭ ਪਛਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਸੇਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਤਾਪਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਗਾਏ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਤੁਗ ਸਾਂ ਸਰੀਰ, ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੰਪੀਰ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀਰ, ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਸਮਾਏ ਸੁਮਾਨਾ, ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਦਰਗੇ ਪਦ ਪਰਵਾਨਾ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓ ਰਹਾਓ। ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਤੁਰ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਮਾਨੁ ਅਗਿਆਨੀ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਇਕ ਮਨ ਤੁੱਠਾ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਜਿਨ ਇਕ ਮਨ ਤੁੱਠਾ ਤਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤਿਨ ਹੋਮੇ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੂੰ ਅਕਥ ਕਿਉਂ ਕਥਿਆ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਹੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤ ਨੈ ਪਾਹੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੀ ਰਹਾਓ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤਸੰਗਤ ਬਣਾਈ।

प्रीत होवे अन्न खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देव हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लाग गए, मिले प्यारे सब दुख त्याग गए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाग गए, बचरे प्रीत खीर मुख खाए, हिरदे बिगसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सा प्रीत माया मुख काचा, बिन सजाए पूरा कच पाचा, चर नानक प्रीत तृप्त गुर साचा। गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख

किश रूप नहीं, किस जात नहीं, किश टंग ना मेरा, क्या मुँह ले बोले गुण बिहून, नंद पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, तस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण मखला चौथा, जो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सदगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है आने, तन तन गुरु गुर सदगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए से।

जिस मिले मन होए आनंद, तो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा किरद मिले, हौ खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा तू मिले रखाओ, हर कृपा हर मिलिया मेरा सतगुर पूरा, इश पुनी जन केरिया लिस गुर तूरा, हर भगत रड़ावे हर भगत सुने।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीव आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीशर करते सब वस गत गयात केरी जन नानक सरनांग ते आए हर रखो पये जन केरी गौड़ी पूर बी महला चौथा क्यों मनुआ खिन्ना टेके बहु रंगी दहे दहे चल चल हांडे गुर पूरा पाया वड़भागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गंडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मनम गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो जन नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडाहे पर साधु अंजलि पुन वडाहे कड नौत पुन वडाहे रहाओ सागत हारा साधना जानिया तिन अंतर होम में कंडाहे ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पावे जमकार सहे सिर डंडाहे हर जन घर घर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मस्कीन पाते रे हर राख राख वड़ वड़ा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा हे गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है।

प्रीत राम राय की और मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायन जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे। कोई करे उपाप अने

प्रसाद केन बद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाई गए घर राम सखाई रखाओ कुशल ना गृह मेरी सा माया ऊंचे मंदिर सुंदर छाया झूठे लाल च जन्म गवाया हस्ती कोड़े देख वेगासा लस्कड़ जोड़े नेव खवासा गल जेवड़ी होमे के फासा राजकुमावे दसारी माने रंग भोग बोनारी ज्यो नरपत सुपने पेखारी ए कुशल मोको सदगुरु बताया हर जोश करे।

तू है मेरा गहना, तुझ निप न जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवन तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सागुर ते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर्ग सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी ही रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याद हस्त कोड़े आर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधहार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां ब्या पे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, दसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर ना जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व स्याणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्ट वस होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबन धान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुखी होए रही है। ऐसा दाता सुखुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हर भाव जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन धान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

पूरे मिटिया अंधियारा, नानका प्रभ अपरे अपारा, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, जिस मन वसै तरे जन सोए, जाके कर्म प्राप्त होए, दुख रोग कछु पौ ना व्यापे, अमृत नाम हृदय घर जापे, पार ब्रह्म परमेश्वर त्याईए, गुर पूरे ते ए मद पाईए, रहाओ करण करामन हार दयाल, जी जंत सगले प्रतपाल, अगम अगोचर सदा बेंता, सिमर मना पूरे गुरुमंता, जाकी सेवा सर्वन दान, प्रभु की पूजा पाईए मान, जाकी टहल न बिरती जाए, सदा सदा हर के गुण गाए, हर कृपा प्रभु अंतर जामी, सुख निदान हर लख स्वामी, जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वडियाई, गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, जी जुत जाके है हाथ, ओ सिमरो अनाथ को नाथ, कब चित आए सब दुख जाए, ऐसा बिन से हर के नाए, बिन हर पौ काहे का माने, हर विसरत काहे सुख जाने, रहाओ जिन तारे वो तरण अगास, जाकी जोत जी परगास, जाकी बक्सना में टेकोए, सेमर सेमर प्रभ निरप होए, आठ पैर सिमरो प्रभ नाम, अनक तीर्थ मज्जन स्नान, बार ब्रह्म की सरणी पाहे, कोड तलंग फिर मैं मिट जाहे, बेमोताय पूरा पासाहो, प्रभु सेवक साचा वे साहो, गुर पूरे राखे देहात, नानक पार ब्रह्म समराथ, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, गुर प्रसाद नाम मन लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, अमृत गुण उच्चरे प्राबाणी, पूरे गुर की सुमत पुराणी, प्रा सिमरत कुशल सा पाए, तार बार सुख सह सुबाए, रखाओ कोई पिछाता जने उपाया, हर कृपा प्रभु आ मिलाया, पां पकर लीनो करे अपना, हर घर कथा सदा जप जपना, मंत्र तंत्र औषध पुने चार, हर घर नाम जी प्राणे धार, साचा तन पायो हर रंग, दुत्तर तरे साध के संग, सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर तन खट्यो जाका नाए सुमार, जे प्राप्त से गुरदे, नानक बिरथा कोई न हे, गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, हत पुनीत होए तरकाल, बिन सजाए माया जंजाल, कसना रमो राम गुणनीत, तुक पावो मेरे पाई मीत, लिख लेखन कागज मुसवाणी, राम नाम हर अमृत बाणी, रघाओ एक कार्य तेरे जाए विकार, सिमरत राम नहीं जम मार, धर्मराय के दूत न जो है, माया मगन न कछु है मोह, उदरे आप तरे संसार, राम नाम जब एक अंकार, आप कमाओ अपरा उपदेश, राम नाम हृदय परमेश, जाके माथे इहो निधान, तोई पुरख जपे भगवान, आठ पैर हरा गुण गाओ, कहो नानक कहो तुस बल जाओ।

पाला तय सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हारख अनंत सोख नहीं दिया तो घर गुरु नानक को दिया गौड़ी मोहल्ला पनवा कमन रूप तेरा आराधो कमन योग ताया ले साधो कमन गुण जो तुझ ले गावो काबल मोर पार ब्रह्म रिझाओ रहाओ कमन सो पूजा तेरी करो कमन सो विद जिद पवजल करो कमन ताप जिद तपिया होए कमन सो नाम होमे मलख होए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहाल जिस कर कृपा सदगुरु मेले दयाल तेसी गुण

एक टकाई। दुख बिन से सो घर गुण गाए, और पूरा पेटा लिवलाए रहाओ। हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे बसूरे उतरी चिंत।

स्वामी सब तुमते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुग जवरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वड भागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमागे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे दास की तूर नानक कौ दीजे गौड़ी महला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए।

की पाई। चोग सहज सांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। नाम रास सासंघाटी कहो नानक प्रभु अवधा काटी। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सा मिटे कलेस। चरण कम मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीओ प्यारी रखाओ। सोग सहज रसमहा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए साध के संग किलब सब थोए। हर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक दीजे साधर वाला। गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए तिस आस क्यों बने माए। खमसार आन कम लागे हौडी बदले रतन त्याग रखाओ। प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत का शोभा।

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मन ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई

सोवत हर संग पैरुआ जाके सिमरन जमनी डरुआ रघाव चरण कम प्रदे निवास सगल दुखा हो या नास आसा मान तान तन एक सचेसा की मन में टेक मां गरीबिन साध अनाथ नान प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम अजन कर सूचे कोर ग्रहण पुन फल मूचे रघाव हर के चरण हृदय मैं बसते जन्म जन्म के

को जाया हस्त्र पय बसे सुख आसन गुर प्रसाद नांग सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोड मजन कीनो इसनान लाख अरब खरब दीनो दान जावन वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाय गोपाल पा मिटे साधु शरण दयाल हरहाव बहुत उर्तव साधन साधे अनकला मन ओरत लादे हर हर नाम रसन आराधे सिमरत सात वेद बखाने जो ज्ञान से सुख जाने नाम जप प्रस्यो मन माने आगाध बोध हर अगमे पारे नाम जपत नाम हृदय विचारे नानको प्रकृपा थारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुरुदेव साया गुर गोविंद पार ब्रह्मपुरा जैसे आराध मेरा मन तीरा रघाओ अनदिन जपो गुरु गुरु नाम ताते सत पय सगल काम दर्शन दे शीतल मन भये जन्म जन्म के किल भग गए को नानक कहां पे पाई अपने सेवक की आपे दरखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सगाई नित पद पारे बाप जसे माई प्रभु की सन उभरे सब कोय करण करामन पूर्ण।

तू संग हमारे बाह जियो रहाओ, खुद बिन करी ना जीवना, रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया, निमक निमक बलिहार जी, हस आलंबन देव प्रभ, घर तो उधर गोपाल, मोय निर्गुण मत थोरिया, तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला, हवन विधि विचार, शरण सुमाई दास हित, ऊंचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महार समाहे, तो प्रसन्न पै केसवा, से जन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंद को, तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक भजे।

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब कुछ पाया, जन नानक सद बलिहार, गौड़ी माज महला पंजवां, हर राम राम राम रामा।

परवार साजन बंसो मित्र सो हर नाम हृदय दे औगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे माल खजाना थेहो कर हर के चरण निधान नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुध नु मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नामा साधु मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहिंस पागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरक सुख ते रहे अतीता तीन जग तत् पछाना उस्तद निंदा तू त्याग खोजे पद निर्वाना जन नानक यो खेल कठिन है किन्हु गुरमुख जाना। गौड़ी महला नामा साधो रचना राम बनाई एक बिनस एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई झूठा तान साचा कर मान्यो जो सुपना रहे नाई जो दिस सो सगल बिनस जो बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथया रहो राम सरनाई। गौड़ी महला नामा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे अहे निस मगन रहे माया में तो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों हे बिद आप बंधावे मृत से ना जो

बाद यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बन आई, गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ, पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ, गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो, ताज अभमान

महा संकट बाण तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे। नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कड़ राम सुमावे। गौड़ी महल्ला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को।

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहया बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिए आई कार, इन बिग राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रखाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पै सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यों लागया, हरा संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पो पागया, साध रहे बादं अहंकारा, चित हर स्यों राता हुकुम अपारा, जात रहे पद के आचारा, दिष्ट पई सुगया तुम थारा, तुज बिन कोई ना देखो मीत, के सेवो के देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए, गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचो हरनाए, सिखिया दीखिया भोजन पाओ, होम संजोगी नित कर जाओ, गर्भ गतं सुगया तुम ध्याना, जोत पई ज्योति माए समाना, लिखत मिटे नी शब्द निशाना, करता करना करता जाना, न पंडित न चदर सियाना, न पूलो न परम फोलाना, कथो न कथनी हुकुम पछाना, नानक गुरमत सहे सुमाना, गौड़ी गुवारे री महला पहला, मान कुंचर काया उदयान, गुर अंकस सर शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सुमान, चितराई न चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए, रखाओ घर में अमृत तस्कर ले, नन्ना कारण कोए किरे, राखे आप वड्याई दे, नील अनिल अगन इकठाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कार

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहया सुमाई, निकर व्याप रहया निचा।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुखाए, गुरमति नाम हृदय।

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पै बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरप हमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परम नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आप भुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुरु हेत, सहस बहु मद कीट में खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दे संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साध भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दार कर महिला से सुखाली, तैन से फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हिर सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहाँ सद पावो, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कबल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट हर

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोल पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार सह जम दुख रखाओ, चोआ

मुक्त दाता सतगुर जो गुमाह गुरमुख प्राणी परम गवाए सहत उपजे घर लिवलाए अरहाओ त्रै गुण काले की सरकारा नाम न चेते उपावन हारा मर जम्मे फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बेका माता बिखमाए सुमाई माया कर मूल जंतर फरमाए हर जीव विसरिया दूजे पाए जिस नर करे सो परम गत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच ना छपे जे को रखे छुपाए ज्ञानी बूझे सहज सुपाए गुरमुख साज रहा लिवलाए होमे माया शब्द जलाए मेरा प्रसाचा मेल मिलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए ताप ते राखे ठाक रखाए पूरे गुरते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सृजन गोई जिस बिन दूजा अवर न कोई नानक गुरमुख बूझे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहे समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हरस पावे अंधन हिरदे जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पर सुखा रखाओ हिरदे सुख पया प्रगास गुरमुख गावे सच गुणतास दासन दास नित होवे दास ग्रह कुटुंब सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रैगुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रसोई मोह कुटुंब सो प्रीत न होए जा हिरदे वसिया ससोए गुरमुख मन बेदया अस्थिर होए हुक बिछाणे बूझे ससोए तू करता में अवर न कोए को सेवी तुते पद होए कृपा करे गावा प्रसोए नाम रतन सजग मै लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लागी सहजे सत मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी होमे ममता दुरमत दुख नास जब हिरदे राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रति प्रवजास जब हिरदे रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हिरदे सचा नाम साए नानक सहजे सा समाए गौड़ी महला तीजा मन ही मन सवारिया पैसा सुभाए सदमा रंगया लिवलाए ने करवस्या प्रभ की रिजाए सदगुर सेवे जाए अब महान गोविंद पाएगे गुणी निधान हरहाओ मन बैरागी जा शब्द पौखाए मेरा प्रभ निर्मला सबते रहा सुमाए गुर कृपा ते मिले मिलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर पर इनबद पाया जाए हर कृपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार त्रिग से सुखाली कामण हो गुबार तिन सबल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर न कोए सगुर ते हम गत पद पाई हर नाम त्याया दुख सगल मिटाई सदा आनंद हर नाम लिवलाई गुर मिले हम कौ शरीर शुद्ध पई होमे तृष्णा था अगन बुझई बिनसे क्रोध खिमा गए लई हर आपे कृपा करे नाम देव गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपेवे।

ना मने सुख होए सागुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोए सागुर ते जो मोह फेरे ओए प्रमदे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन यो जग परम भुलाया मोए ठगो ली पाए जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए सगुर सेवन सो सोहणे होमे महल गवाए कुदरते से निर्मले चले सतगुर पाए हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले मन परदेसिया क्यों मिल गए घर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलया प्यारा आए मन कर हला सतगुर पुरख ते आए हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए जिथे लेखा मंगिए हर आपे लए छिड़ा।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

सुबाज वखर कोई ना सूझे, नाम लेवो खेन खेनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरे सच पाया।

मारे हो में मारे इन बद मेरो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर पाया सगले दुख विसारे कामन पिरो फुली जियो माया मोए प्यारे झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे कूड़ निवारे गुरमत सारे जुए जन्म नहारे गुर शब्द।

भावे अन ना पानी, पानी अन ना भावे, मरिए भावे, बिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, ज्यों

सखा हर जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे उड़ीनिया तर करे सेवा शीश चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सासना कड़ी विसर पल मुहूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे।

तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीर है। गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है। फिर दोष नाही सुख दाते हो मिचड़ी बुरे आरे। बिनवंत नानक दया तारो तार आवो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा। हो सिर अर्पी समीत प्यारे जो प्रादे संदेसा। अर्प्या ता शीस सुथान गुर पै तंग प्रभु दुखाया। खिरमाए सगला दुख।

के मोहे न बुझे तो प्रभ सदगु संग लेख गणत न छूटी है काची पीत न शुद्ध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो रते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखे तुर जाके हर संप नानक करता के सलोक लालच चूड़ बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्मे मरना ज्यो जो हुक्म तेवे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसरा ही अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो वनहार होश आया ओ आका अंतन का हु पाया पीठ हस्त

मैं पुरुष माने पलट पुरुष ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना सलोक आत्म रस है जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनद नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम है राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर के दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे

एक नाम ले मने परू यैया जन्मन हारिये पुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुर पूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ये बिखिया दिन चार छे छाड़ चले हो सब कोए ताको मात पिता सो थिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते ते बौर न आया श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवा।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम साही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म तय।

सुख होए। नानक सब मेरा बरहया शांत अनंतर सोए पौड़ी। फेर ओ कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान। होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान। हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप। अते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होद किरपाला। ओरे

अमृत प्राप नाम भक्त जना कई मन बस राम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ न बस, प्रभु के सिमरन दुख जम नस, प्रभु के सिमरन काल पर हर, प्रभु के सिमरन दुश्मन टर, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लाग गए, प्रभु के सिमरन अन दिन जाग गए, प्रभु के सिमरन पौ न व्याप, प्रभु के सिमरन दुख न सुनताप, प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्वनिधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जब ता पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभु के सिमरन तर्क है माननी, प्रभु के सिमरन हुए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझ, प्रभु के सिमरन सबके सुज, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरह से तनवंत, प्रभु को सिमरह से पुतवंत, प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह से बेमोहताज, प्रभु को सिमरह से सर्व के राज, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अंध कन्हेरे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबहु ना चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुरबानी, प्रभु के सिमरन सहे सुमानी, प्रभु के सिमरन नित्यलयासन, प्रभु के सिमरन कमल बेगासन, प्रभु के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक तीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाथ अष्टपदी, जय मात पिता सुदमीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा भयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुस्कल होवै अदपारी, हर को नाम खिन महे उधारी, अनक पुनः चरण करतनी तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सरसठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग यो जात अकेला, तय हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गद पाई है, टूट नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक बिघन जय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संतोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंत तेरा को ना सुजानू, हर का नाम तय नाल पछानू।

रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है

सगल कटा को देव उदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल स्थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुणियार ए

अंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई, पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, जिस ठाकर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सौ अपनी दे रास, खाद पीत बरते अंधे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे।

कछपुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता

विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परे पुकारो माह। ब्रह्म ज्ञानी कह नागी तंद, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंद। ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो फल, ब्रह्म ज्ञानी सोफल फल। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी कौन।

प्रवते हुए ब्रह्म है सुमत, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रसोय, कई कोड पार ब्रह्म के दास, तिन होते या तुम परगास, कई कोड तत् के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पहे सदसदी जीव, कई कोट नाम गुण गावे, आत्मरस तुग सह सुमावे, अपने जन कौ सा सा सुमारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोय, नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो पावे सोई होग, खिन में था व्युथा पनहार, अंत नहीं किस पारावार, हुक्मे तार अतार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा सुमाई, प्रभ पावे मानो गद पावे, प्रभ पावे ता पात्र त्रावे, प्रभ पावे बिन सास्ते रख, प्रभ पावे ता हर गुण पख, प्रभ पावे ता पतत उधार, आप करे अपन विचार, दुआ सिरिया का आप सुवामी, खेले बिगसते अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मान गुते क्या हो आवे, जो तु पावे सोई करावे, इसके हाथ हो ता सब कुछ ले, जो तु पावे सोई करे, अनजानत बिखिया में रचे, जे जानत अपने आप बचे, परमे पूला दर्द तावे, निवख में चार कुंट फिरे आवे, कर कृपा जे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दिश कशु न आवे, तिस तत्काल दज प्रटावे, जाको अपनी करे बगसीस, ताका लेखा ना गने जगदीस, जियो पिंड सत की रास, घड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बाल नाई इस हाथ, करण करामन सर्व

कबहू होए बहे बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अब कीर्त में आवे, कबहू पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिल ही रहे, गुर प्रसाद नांग सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तड़ती स्नान, कबहू सिर साधक मोह ज्ञान, कबहू कीड हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

ते बौर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलया एक टाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत। आप को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे। तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक की खामुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मान ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। तब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दरगे परवान। कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे। अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अंक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आस को जो पला कहावे, किसे पलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब सुख सुगुना ही कोए। जा ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग ने चलना ही चीत। जब लग मो मग्न संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लग तो उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे, ने तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राज, स्वपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुखोय, बड़भागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करामने आपे आप, सदा सदा।

तेन पुरख का उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करने गार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा।

गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल भगसंद साथ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ।

अनंत रूप मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अवनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे पूर।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मै हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उधार हर घर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल सो तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अरबंता इन ते कहो तुम कमर सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कमर छुटकार आस हस्ती रस असवारी झूठा डंप चूड़ पासारी जिन दिए ते बुझे ना बिगाना ना विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किलबिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गद पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुपाए नान गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समायल बिन सजाए होमे दिख पैल होए चिंत बसे सुख नाल साध गरासगर नाम सुमाल छाड सियान सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार ईहा सुख दरग है जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप ए भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक अराध प्राश्त गए मन तन अंतर ए प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रा बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम ताजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्ट महा सुख होय हारस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जिन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सोभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सन्यान सब त्याग अंतर परगास अनदिन निवलाग बड़भागी जपया प्रसोय नानक नाम रते सुख होय सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनू सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इस पुनी सरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम सुमाए सो क्यों बिसरे जे काल ना पान सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन मैं राख गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ जन्म जन्म का टूटा गंढ गुर पूरे तत हे बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पै तरिगे संसार इन भक्ति तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर एही सुवाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होय मन बिकसे साध चरण तोय भगत जना के मन तन रंग बिरला को उपावे संग एक बद्दी जे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व सुमाए प्रभ संत दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जप
सो होए पुनीत। भगत पाए लावे मन गीत, हम निर्गुनियार नीच अजान। नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्प है कुंठ मुक्त मोख पाए। एक निमख हर के गुण गाए, अंतराज भोग बढ़ियाई। हर के नाम की कथा मन पाई, बो पूजन का प्रसंगीत। रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरणी शोभा तनवंत। हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत, साध संग प्रद्यो निवास। सर्व सुख नानक परगास, श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार। सुन सुमति आप, अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार, क्यों कशना दृष्टेता। पाप उन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध। तबैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत। तब हर्क सोग हो किसे व्याप्त, जब अपने आप पार ब्रह्म। तब हो कहाँ कस हो वद परम, अपन खेल आप वर्ती जा। नानक करने हार न दूजा, जब हो प्रव केवल तनी। ता बंद मुक्त को किस को गनी, जा बेके घर अगमे अपार। तब नरक सुर्ग को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रसहित सुपाय। तब से सकत कहो कत जाय, जब आपे आप अपनी जोत तर। तब कमन निडर कमन कल डर, अपन चलते आप करने हार। नानक ठाकुर अगमे अपार, अविनाशी सुख अपने असन। ते जन्म मरण कहो कहाँ बेनासन, जब पूर्ण करता प्रसोय। तब जम की त्रास कहो किस होय, जब अवगत अगोत्र प्रावेक। तब चित्र गुप्त इस पूछत लेख, जब नाथ निरंजन अगोचर अगध। तब कौन छुटे कौन बंधन बद, अपने आप की अचरजा। नानक अपन रूप आप की उपरजा, ये निर्मल पुरख पद होता। तय बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण। ते कौन को मान कौन अवमान, जय स्वरूप केवल जगदीश। तय शल शिद्र लगत कौ कीस, जय ज्योत स्वरूपी जो संग सुमावे। ते किसे पूख तमन त्रिवतावे, करन करामन करने हार। नानक करते का नाए सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई। तब कमन माए बाप मित्र सुध पाई, जय सर्व कलाया पे परवीन। तय वेद कतेव कहाँ को चीन, जब अपने आप उतार। तो सगन अब सगन कहाँ विचार, जय अपने ऊच अपने आप नेरा। ते कौन ठाकुर कौन कही है तेरा, बिस्मन बिस्मर है बिस्माद। नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल अछेद पे सुमाया। ऊगा किसे व्यापत माया, आस को आपे आदेश। यो गुण का नाही प्रवेश, जय एक एक एक भगवंता। ते कौन अचिंत इस लागे चिंता, जय अपने आप पतियारा। ते कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा। नानक आप सको आपे पहुंचा, जय आपर चोपर पंचकार। यो गुण में किन्नू विस्तार, पापुन ते पई कहावत। को नरक ओ सुर्ग बंशावत, आल जाल माया जंजाल। होमे मो परम पे पार, दुख सुख मान अपमान। अनक प्रकार कियो बखियान, अपन खेल आप कर देख। खेल संकोच तो नानक एक, जय अवगत भगत तय आप। जय पसरे पासार संत प्रताप, धूपा काया पे तनी। उनकी शोभा उनहू बनी, आपे कौतुक करे अंध चोज। आपे रस पोग निरजोग, जिस भावे तसे अपन नाए लावे। जिस भावे ये खेल खिलावे, बेसुमार अथागन ते अतुल। जो बुलावो त्यो नानक दास बोले, श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक या विस्तार। ज्ञात पावे ता सिर चो पाए, अपने पाने लय सुमाए। तुम ते पिन नहीं किश होए, आपन सूत सजत परोए। जाको प्रभु आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए।

ਸਾਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ਹਰ ਘਰ ਭਜਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਆਇਓ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਖ ਨੰਗਾਇਓ ਹਰ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਖ ਕਰ ਬਾਧਿਓ ਦੀਰਘ ਰੋਪ ਮਾਇਆ ਆਸਾਧਿਓ ਦਿਨੇ ਪਕਾਰ ਕਰ ਸੁਨ ਪਾਇਓ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਇਹ ਹਾਲ ਸਰਨਾਂਗ ਪ੍ਰਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਸਲੋਕ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਚੌਦੇ ਪਵਨ ਸਗਲ ਵਿਆਪਤ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਨ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰਨਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ਪੌੜੀ ਚੌਦੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਤਰਨ ਆਕਾਸ ਹਮੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਸੇ ਦਿਆਲ ਸੂਖਮ ਅਸਤੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ ਸਲੋਕ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸੀ ਚਿੰਦ ਪੌੜੀ ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਵਿਕਾਰ ਸਬਲ ਪੂਰਨਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ਦੁਰਮਤ ਮਿਟੀ ਹੋਮ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਰਣ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਮਨ ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਮਨ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਸਰਾਮ ਸਲੋਕ ਪੂਰਨ ਕਭੂ ਨਾ ਡੋਲਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ ਪੌੜੀ ਪੂਰਨ ਮਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਕ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਜੀ ਜੰਤ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਤਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਕਾ ਹੱਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕੀਆ ਜਾ ਕਾ ਹੋਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੋ ਸਬਦ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਰਨ ਜੋਗ ਆੜ ਪੈਰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨੈ ਬੂਝੀਏ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰੋਕ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸਹਿਸਾ ਗਏ ਸਰਨ ਗਹੀ ਹਰ ਰਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸੇ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੇ ਜਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਕਿਲਵੇ ਕਾਟੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਾਏ ਫਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਨੈ ਪੋਹੇ ਤਸੁਮਾਏ ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸੋਏ ਜਿਨ ਪੜਿਆ ਭਗਵੰਤ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਦਰੇ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ ਜਿਨ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਰਵਾਲ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਤ ਸਭ ਕੋਏ ਏਕ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੇ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ ਹੈ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਲਹਾਰ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮਾਇਲ ਬਿਖ ਉਤਰੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ ਸਭ ਕਾਜ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚਾ ਗੋਸਾਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਆਏਂਦੀ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਏਂਦਾ ਸਚਨਾਮ ਸੁਮਾਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਲਿਣਨਾਵੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ ਸਾ ਬੋਲਣ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ ਮਨ ਅਹੰਕਾਰ ਸਲਾਹਦੇ ਹੋਮੇ ਮਮਤਾਵਾਦ ਜਿਨ ਸਾਲਾਹਨ ਸੇ ਮਰੇ ਖਪ ਜਾਵੇ ਸਾਪ ਅਪਵਾਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਪ ਹਰ ਘਰ ਪਰਮਾਨਾਦ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਮਨ ਹਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤ ਹਰ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਸਬਦ ਉਪਰ ਹਰੀ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਇਕ ਮਨ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਕ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚੇ ਸਚਨਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
मन अंतरहु में रोग है प्र पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन का रत्ता रंग स्यो गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख अगम है इस नाल तू वड़ी है तो जेवड़ हो सो आखी है तो जेगा तू है पड़ी है तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करे सो सच्चे होए सी ता कायत कड़ी है श्लोक महला चौथा मैं मंतन प्रेम प्रम का अठे पैर लगन जन नानक कृपा तार प्रभ सदगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत प्रम की जो बोलन तेवे सुहन नानक हरिया पे जानदा जिन लाई प्रीत प्रन पौड़ी तू करता आप फुल है फुलन विच नागी तू करे सो सचे पला है गुर शब्द बुझागी तू करण कान समर्थ है दूजा को नागी तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्यागी सब जीत तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ागी श्लोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सज्जन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुर दाता दयाल है जिसनु दया सदा होए सतगुर अंदरो निरवैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निरवैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों तिष्ठिया ना कोए सतगुर सबना दा पला मनाएंदा एदा बुरा क्यों होए सतगुर नु जिया को इच्छदा तेखा फल पाए कोए नानक करता सब कुछ जानदा जिदू केश गुजा ना होए पौड़ी जिसनु साहेब वड्डा करे सोई वड जानी जे साहेब पावे थे बख्स लै सो साहेब मन पानी जे को उस दी रीस करे सो मूड अजानी जिसनु सतगुर मिले सो गुण रवे गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच सुमानी श्लोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है निरभौ निरवैर निरंकार जिन जप्या एक मन एक चित तिन लथा हो में पार जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जिना जयकार कोई निंदा करे पूरे सदगुरु की तिसनु फिट फिट कहे सब संसार सगुर विच आप वर्तदा हर आपे रखनहार तन तन गुरु गुण गावदा तिसनु सदा सदा नमस्कार जन नानक तिन कौ वारिया जिन जप्या सिरजनहार महला चौथा आपे धरती सजियन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास जन नानक नाम ते आए तू सब किलवख कटे तास पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे जोत सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ न आए इनके मुख दर उजले जिन हर हिरदे सच्चा पावे कूड़ियार पिशाह सटियन उड़ हिरदे कपट महा दुख पावे मोह काले कूड़ियारियां कूड़ियार कूड़ो हो जावे श्लोक महला चौथा सगुर तरती तरम गए इस विच जेगा को बीजे तेगा फल पाए गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल घर पाए ओ न हलत पलत मुख उजले ओ हर दरगे सच्ची पै नाए एक न अंदर खोट निर खोट कमावे वे जेगा बीजे तेगा फलकाए जा सतगुर शराब नजर कर देखे स्वाब गीर सब उगड़े आए वे जेगा चितवे नित तेगा पायन वे तेहो जेगे दईये बजाए नानक दुई श्री खसमे आपे वरत नित कर कर देखे चलत सुबाए महला चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगे सोथा ए पाए कोई गल्ला करे कनेरियां जे कार वत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अंकार ना विचों जाए अंकारियां नू दुख पुख है हथडे कर कर मंगाए पूर ठगी गुजी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूर्व लिखया तेस सतगुर मिले प्रवे आए जो लोहा पारस पेटी है मिल संगत स्वर्ण होए जाए जन नानके प्रतू तनी जो पावे तेरे चिलाए पौड़ी जिन घर गिर दे सेवया तिन घर आप मिलाए गुण की सांझ तिन स्यो करी तब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जे देश सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने
जिन अवगुण मेठ गुण प्रगटी आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आ लाए। श्लोक महला चौथा। सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अनदिन हर हर नाम त्यावे, हर हर नाम रमत सो संजम, हर नामे की त्रिवतावे, हर नाम तान हर नाम दीवान, हर नमो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूर्त, सो मान इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सो गुर पूरे की, जे करता मार देवावे, फिर ओ वेला ओ सत न आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे, नरक कोर मुए काले खड़िया, जो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे, जा हर घर नाम त्यावे, हर बाता आग सुनाए नानक, हर करते एवे पावे महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने, ओ मनमुख अज्ञान मुठा दुखमाया, ओस अंदर कूड़ कूड़ कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दईये, ओस दे गल पाया, ओ गल भरोसी करे बो तेरी, ओस दा बोलिया किसे ना पाया, ओ कर कर हंडे जोरन दुहागन, ओस नाल मोजोड़े ओस पी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिपतो वरते, ओस दा पास छड गुर पास बह जाया, जो गुर गोपे अपना सो पला नाही पंचो, उन ला मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आग सुनाए, पूरे गुर का बचनी ऊपर आया, गुर सिखा वड्याई भावे गुर पूरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी, सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच ते आएंदा, सच सच्चा सतगुर इके, सोई स गुर पुरख है, जिर पंजे दूत कीते वस शिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाएंदे, तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोह फिके, ओए बोले किसे ना पावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप कृष्णा नी लाया, गुरमुख भगत जमाइयन मन मुखी मूल गवाया, सब को बीजे अपने पले नू, हर पावे सो खेत जुमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजया, हर अमृत नाम हर अमृत पाया, जम चूहा कृष्णित कुरकदा, हर करते मार कढाया, किरसाणी जम्मी पाओ कर, हर बोल भगत जुमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिलनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम अराध्या, आप तरया सब जगत तराया। महला चौथा। सारा दिन लाल चिट्टिया, मन मुख हो रे गल्ला, राती उगे दबिया, नवे सो सब ठिल्ला, मन मुखा दे सिर जोरा अमर है, ने देवे फला, जोरा दा आख्या पुरख कमाम दे, से अपवित अमेद खला, कामया पेक सुध नर, से जोरा पुछ चला, हर गुर के आख्या जो चले, सो सद पुरख फल फला, जोरा पुरख सब आप यो पायन, हर खेल सब खिला, तव तेरी बंत बनामणी, नानक फल फला पौड़ी, तू वे प्रो अथाओ है, अतुल क्यों तुलिये, से बड़ पागी, ये तुद ते आएंदे, जिन सदगुर मिलिये, सदगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए, सतगुर की रीस है, होर का चिपच बोल दे, जे कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़िए, ओ न अंदर होर मुख होर है, बिख माया नू जगमर दे करिए। श्लोक महला चौथा। सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन हो सो सेवा काले, जिन अंदर कपट विकार झूठ, वो आपे सच्चे वक कढे जिनू माले, सच्चा सिख बै सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी किते थाए पाले, जिन्ना सतगुर का आख्या सुखावे नाही, तिना मोह भलेरे तिरे दईये गाले, जिन अंदर प्रीत नहीं घर केरी, से किचरक वेराइयन मनमुख बेताले, सतगुर नू मिले तो अपना मन थाए रखे, वो आ वरते अपनी वत नाले, जन नानक इकना गुरमेल सुख देवे, एक आपे वख कढे ठगवाले। महला चौथा। जिन्ना अंदर नाम निदान हर, तिनके काज दईये अंधेरास, तिन चूकी मोहता जी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास, जा करता वल ता सब को वल, सब दर्शन देख करे साबास, सहो पासो सब हर का किया, सब जन को आए करे रहे रास, गुरपूरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया, गुरपूरे दान दिया हर नेचल, नित भगसे चढ़े सवाया, कोई निंदक वड्याई देख ना सके, तो करते आप पचाया,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ ਵੜਦਾ ਤਾ ਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਗੜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਣਾ, ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਦਿਸ ਆਮਦਾ ਸਭ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਹੋਰ ਚਿੱਤ ਲਾਏਂਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਜ ਪਜ ਮੋਏ ਅਜਾਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਦਭਾਉ ਨਾ ਦਿੱਚੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਦਿ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ।

कार बंदो सज धर्म का गढ़ थम अहल ओट लयो नारायण दीन दुनिया चल नानक पकड़े चरण हार तेस दर गए मल सलोक महला पंजवा जाजक मंगे दान दे प्यारे देवन हार दातार मैं नित चितारे निखुट न जाई मूल अतुल भंडारे नानक शब्द अपार तेन सब किश सारे महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने जमके पंथ।

केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइए जोग, बनका मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब ने चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रतनाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ, काया रत बहरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट महारस पीजय, कबीर जी गौड़ी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन माधो स्यों लाई है, चितराई ना चतर पुज पाई है रहाओ, पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले राग राया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन्ते सब उत्पाती।

अब मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे काल हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ होए आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शतरपत कबहू पेघारी, सागत मरे संत

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग।

गगन साल चोवे मेरी पाठी, सांच महारस तन पया काठी, होआ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा, रहाओ सहज कलालन जौ मिल आई, आनद माते अनदन जाई, चीन त चीत निरंजन लाया, कौ कबीर तो अनपो पाया।

कहे तो कबीर पले असवारा, बेर कतेबते रह निरारा, गौड़ी कबीर जी। जे मुख पांचो अमृत खाए, ते मुख देखत लूप टलाए, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा, रहाओ काया विभूति बहुविध पाती।

पौड़ी ग्वारेरी हस्तपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे दिखया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुखमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खोजो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मन लीन पय सुख देओ जियो एक हर सगल शरीरा इस मन को रब रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम ना पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहा पर पूर सदा संग नाही हर

कबीर ठग सो मन मानिया गई ठगौरी ठग पहचानिया आ मोको पए राजा राम सहाई जन्म मरण कट परम गद पाई हराओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छिड़ाए अमृत नाम जपो जब रसना अमोल दास पर लीनो अपना सदगुर कीनो पर पुकार काढ़ लीन सागर संसार चरण कमल स्यों लागी प्रीत गोविंद बसे निता नदचीत माया तप्त बुझिया अंगयार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दरड़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल के सूतक थल के सूतक सूतक ओपत होई जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक सूतक परज बगोई कौरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रघाओ नयनो सूतक बयनो सूतक सूतक श्रमणी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परे रसोई फासन की बेद साव को जाने छूटन की एक कोई कहे कबीर आराम हृदय बेचारे सूतक तिने न होई गौड़ी झगड़ा एक न बे रहो राम जो तुम अपने जन सौ काम हरहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया राम बड़ा कै रामे जानिया ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया वेद बड़ा के जाते आया कहे कबीर हो पया उदास तीर्थ बड़ा के हर का दास अराग गौड़ी चेती देखो पाई ज्ञान की आई आंधी सवे उड़ानी प्रम की टाटी रहे ना माया बांधी हरहाओ तू चित्ते की दो थून गिरानी मोह बलेंडा टूटा तिसना शान परी तारी ऊपर दुर्मद पांडा फूटा आंधी पाचे जो जल बरखे ते तेरा जन पीना कहे कबीर मन पया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर जस सुने

कुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए निंदा करे सो हमारा मीत निंद कमाए हमारा चीत निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लोर निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तारन राम राया अरहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतिया ही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कहे कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई अब मान जागत हो रे पाई गाफल हो के जन्म गवायो चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत होए रहो तो ले प्रगास उजारा नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना थे सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणा ना रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में ध्याना ना बिखे रोग पय बंधन पग मन निज कर सुख जाना ना एक सुमात्रत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आना ना चंद्र बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थाना ना ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक समाना ना कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन माना ना राग गौड़ी पूर्वी बामन।

चरलोत्र साब कश इन गीम आ गए, ए अखर खिर जाएंगे, ओए अखर इन मैन आ गए, जा बोलते चर आवा, जय अबोल तय मन ना रखावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे ना कोई, अले लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बड़क बीज मै रव रहे हो, जा को तीन लोग विस्तार, अले लहंता पेद शय, कश कर पायो पेद, उल्ट पेद मन पेद्यो, पायो अपंग अशेद, तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू बेल पुराण, मन समझावन कारण, कशुक पढ़िए ज्ञान, ओंकार आदि मैं जाना, लिखर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा, सद विकास संपट नहीं आवा, हर देता कुछ मरस पावा, आके कहा कह का समझावा, खखा ए खोड़ मन आवा, खोड़े शाड ना दैद सतावा, खसमे जान खिमा का रहे तो होए न

आद करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

तेरी हरो विपत जन करो सुपाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा, बेगमपुरा सहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तेठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता न तरस जवाल, आ मैं खूबतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई रहाओ, कायम दायम सदा पातशाही, दो मना सेम एक सो आही, आबा दान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करे जो पावे, महरम मैल न को अटकावे, कह रविदास खरा चुमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, गौड़ी बैरागन रविदास जियो, काट आव काट डूगर कणा, एक निर्गुण पैल हमार, परमैये सो एक बेनती।

आपे नदर करे जो कुछ करना सो कर अवरण करना जाई जैसा वरते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहद्या उठद्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

मन का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंध खान जीवन की बहुती आस लेख तेरे साध गिरास एरस अंधले दीपक दे भौजल डूबत चिंत करे

आए, नदर कर इतना सदगुर मिले, परमत नानक पवजल तर आसा मगला पहला पंच बदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उदबुज कामना ही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे तरणी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर देख बाग पे चोखी सिंचित पाओ करेगी सबना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे लेगी जेते जी तेते सब तेरे विण सेवा फल किसे नाही दुख सुख पाना तेरा होवे विण नावे जियो रहे नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जूत नाही कहे नानक जीवाले जिया जय पावे है राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है तोती ज्ञान जिनेऊ ध्यान पुष्पाती हर नामा जा जा चौनाओ गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रखाओ बार जनेऊ जिचिर जोत है नार।

तू सब नाका सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती, मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई, जे को नाओ तराए वड्डा, साद करे मन पाने, खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए, नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा, महला तीजा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, हर दर्शन पावे वडपाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगमे पारा, गुर के दर्शन मुक्त गद होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुखोए, गुर के दर्शन मुख द्वार, सदगुर सेवे प्रवास सधार, निगुरे कौ गद काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर, जम काल ते नेड़ न आवे, नानक गुरमुख साज सुमावे। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचू आप गवाए, सदगुर सेवे तिल ना तुमाए, निरपो दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए पाग कोए, गुण संग्रह विचू अवगुण जागे, पूरे गुर के शब्द समाहे। हरहाओ गुणा का गाहक होवे, सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम खाने, साची बाणी सुचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए ना जागे, मन निर्मल साचे शब्द समागे, सेवड भागी जिन नाम ते आया, सदा गुण दाता मन वसाया, जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ, आपे देवे सहे सुपाए, नानक कीमत कहन न जाए। आसा महला तीजा, सतगुर विच वड्डी वड्याई, किरी विशुन्ने मेल मिलाई, आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर के शब्द मिले जन कोए। रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊची बाणी ऊचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सागुर पेटे ता उतरे पीर, बिन गुर पेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीव तरह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गल पाए। आसा महला तीजा, मेरा प्रसाचा गहर गंभीर, सेवत ही सुसा शरीर, शब्द तरे जन सह सुपाए, तिन के हम सद लागे पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिन का जन्म मरण दुख लाता, ते हर दरगे मिले सुपाए। रहाओ सद चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर पर सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखने आखे बके सब कोए, आपे भविष मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवार नहार। आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया, सदगुर सेवे सोजी होए, दूजे पाए न लागे कोए, मूल लागे से जन परवान, अन दिन राम नाम जग हिरदे, कुर शब्दी घर एको जान। रहाओ डाली लागे ने फल जाए, अंधी कमी अंध सजाए, मनमुख अंधा ठौर न पाए, दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए, गुर की सेवा सदा सुपाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरे कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम जाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया,
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ, ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੇ ਮਨ ਮਨਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ, ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਉ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸੁਭਾਈ, ਸੌ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਵਾਸ, ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ, ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਸੋ ਹਰਖ ਦੁਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ,

सोई जन जाने हर गुण सदगी आख वखाने जिन घर सेवया तिन सुख पाया सहजेगी कर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट।

प्रवरया कट अंतर मुख बोलो गुर अमृत बयना रहाओ। मैं मंथन प्रेम महाबैराग सगुर पुख पाया वड़ पाग दूजे पाए पवे बिकुमाया पाग ही नहीं सदगुर पाया अमृत हर रस हरिया पियाया गुर पूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा मेरे मंत्र प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुसार नाम जपो मेरे सज्जन सेना नाम बिना में अवर ना कोई वड़े पाग गुरमुखर लेना रहाओ। नाम बिना नहीं जीव्या जाए वड़े पाग गुरमुखर पाए नाम हीन कालख मुखमाया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया। आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सतगुर नाम दिड़ाया रस गाए गुण परमानंदा रहाओ। हर गुण गावे हर जन लोगा वड़े भाग पाए हर निरजोगा गुण विहून माया मलतारी वेण गुण जन्म मोए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत अद कढ़ीए। आसा महला चौथा नाम सुनी ना मुंह मन पावे वड़े भाग गुरमुख कर पावे नाम जपो गुरमुख परगासा नाम बिना में तरनी काई नाम रव्या सब साज ग्रासा रहाओ। नामे सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावे थो मेरा मीत सखाई नाम गीन गए मूड नंगा पच पच मुए देख देख पतंगा आपे थापे था प्यो थापे नानक नाम देवे घर आपे। आसा महला चौथा गुरमुख हर घर वेल वधाई हर लागे हर रस करसाई हर घर नाम जप अंत रंगा जप जप नाम गुरमुख सा लागी मारिया काल जम कंकर पोयंगा रखाओ। हर घर गुरु में भगत रखाई गुर तुठा सिख देवे मेरे पाई होमे कर्म किस बिद नहीं जाने ज्यो कुंचरन आए खाग श्री शान जे वड़ पाग होवे वड़ ऊचे नानक नाम जपे सा सूचे। आसा महला चौथा हर घर नाम की मन भूख लगाई नाम सुने मन तृप्त मेरे पाई नाम जपो मेरे गुर सुगमीता नाम जपो नामे सुख पावो नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ। नमो नाम सुनी मन सरसा नाम लाल है गुरमत बिगसा ना बिना कुश्ती मो अंधा सब निफर कर्म किए दुख तंदा हर घर हर जा जपे वड़पागी नानक गुरमत नाम लेव लागी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद महला चौथा राग आसा कर शिवें के तिन हथ कर तंत वजावे जोगी थोतर वाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी यो मनुआ हारंग पेन जोगी हर देव मती उपदेश जुग जुग हर घर एको वर्त आगे हम आदेश हरगाओ। गावे राग पात बबोले यो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन कौ बसदा उड़ बैल गए चर बैल का नगर में कर्म हरबो हर जमे हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम थिट सब तुमरी जो द्यो मती तेल जन नानके प्रभु अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल। आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आप तजात पार खिन लाग हों तब लग समारो नाम मेरे मान ऐसी पवित बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। तब को मिले पंच सत गायन तब को राग तुन उठावे मेलता चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाप सारे तब को हाथ पसारे हाथ पाप सारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगों को पति आवे लोग पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदे सत्याव ता जय जय करे सब कोए। आसा महला चौथा सत संगत मिलिए घर साधु
मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कल चानन अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाचो हर घर त्याए, ऐसे संत मिलो मेरे पाई, हम जन के तो वे पाए, रघाओ हर घर नाम जपो मन मेरे, अन्दन घर लेवे लाए।

परमेसर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाव। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सिधावे अणहुंदा अजगर पार उठाए निंदक

तुझ पाए अमान, विष्टा अस्त रगत प्रेटे चाम। इन ऊपर ले राख्यो गुमान, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा, एक तुके चौप दे, एक कड़ी दिन समुख को बहुत देहारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन से मुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख को पिरे मिलावे। हरहाओ चार पैर जो जुगे समाने, रैन पही तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, ब्राह्मण रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखा।

पंजवां हा रस छोट होशे रसम माता करमय वस्त बार उड़ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुणे अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी।

साथ रव रहा प्रभ सबके साथ पूरा गोर पूरी बंत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवा गुर के शब्द बनावो इहो मन गुर कर दर्शन संचो हर तन।

मन सदा आनंद आन सामे व्यापे चिंद हर्ष पीवे आल मस्त मतवारा आन सा सब होशे रे रहाओ हर रस की कीमत कही न जाए हर रस साधु वार समाए लाख करोरी मिले ना केहे जिसे प्राप्त तिसरी देह नानक चाह पै विस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत अब छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मोहल्ला पंजवां काम क्रोध लो मोह मिटावे छुटके दुरमते अपनी तारी होए निमाणी सेव कमावे ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटे तुर सहसा सुख पावे तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुरसेवा आत्म शुद्ध बिख त्यास निवारी दासन की होए दास दासरी ता पावे सोभा घर द्वारी यही आचार यही व्यवहारा आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी जो यो मंत्र कमावे नानक तो पौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत।

पूरे, अंध भया सा मिटे रसूरे, रहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया, आसा महला पंजवा बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ ना बाला बूढ़ा पाई, हरहाओ नानक दास साध सरणाई, गुर प्रसाद पो पार पराई, आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावे, केलबक जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सगुर फेटे पूर्ण पार ब्रह्म।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सा मीता झूठा इओ पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खा खा मोए गवारा।

लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, राग आसा, कार सेवा, महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सूग सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जान रसक रस गुण गावे, मसलत मता सियान बजन की, जो तू करह करावे, रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे, सुख निदान।

नरक स्वर्ग फिर अवतार गृहस्त में चिंत उदास अंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभु कृपा ते मन से आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संघर कीर्तन गाइए ये वो स्थान गुरु ते पाईए रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बार फन सूखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन भावे रखाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत कहे दुख डेरा हुक्म बूझे सोई परवान साज शब्द जाका निशान गुर पूरे हर नाम दिरड़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तह ते जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई।

काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, तप्रव नानक मीठे लागे, आसा महला पंजवा, एको एकी न निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे अरहाओ, सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलो खिन में करता, आप लेपा निर्गुण रहता, करण करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा, कोड़ जन्म के रे पवारे,

गुरपूरे के चरण गए, कोड जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी मया। आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे। हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना हीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप। आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओ

नरक सुर्ग फिर अवतार कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी और पया बोर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी हराओ कर्म अमृत आन निसारयो खिसर गयो हूं पर डारयो साध मोहला दी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे।

सदा प्रफुल्ल काढ़ काढ़ संपट हय रेजा का अपग सब संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े हर साल ग्राम।

साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगर तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेर परे पंडार तोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय निर्ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहे आ मानिया सूग सहज इस कर का जानिया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमतदार ओ अवनासी अगमे पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम सजन लागा सुग सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमें पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब विसरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संतृप्ता से हर घर त्याय हर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया में दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कलमा दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन वस्या हर का नाम नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावे, आवर कहू पे बौर ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह समागी, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाइगे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे, वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रसरना, गुर नानक जाको पया दयाला, सो जन होआ सदा निहाला, आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया पेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माए आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सामे लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद चिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन पावे, वदी वेर बो पीढ़ी चाली, धर्म कलाघर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, पै अचिंत एक लिवलाया, ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर के पान, गुजी शन्नी नाही बात, गुर नानक तुठा की नींदात, आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट पया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पे पाई, रहाओ शरण परे साचे गुरदेव, पूर्ण होई।

वंजन वहन्दे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विणनावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की सरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई ना किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार पौजल तरबी है।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरमल हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन दर्श देखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनु तू अस्थिर कर मान है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्र गृह सगल समगरी सामित्या असनाहा रे मन क्या करे है हा हा हिट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन ले लाहा रहाओ जैसे वस्त्र दे ओढ़ाने दिन दो चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत कोर को आहा जैसे अंब कुंड कर राख्यो परत सिंध गल जाहा आवग आग्या पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा रे मन लेखे चाले लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवां अबुट बाते पई सिदरी दूत दुट सजनई अंधकार में रतन प्रगास्यो मलीन बुद्ध खशनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर ना फल पाए सदगुर मिलई हरहाओ मुए किरपन को कोई न जानत सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कई न पावत हुन सगल चरण सेवई आड़ आड़ को फिरत टूंढते मन सगल किशन बुझ गई एक बोल भी खपतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कम वखान आगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेगताया सत वखर तू किन्ने नाही पापी बदा रे नाया सदगुर तेरी आसाया बदल पावन तेरो नाम पार ब्रह्म मैं एहा ओटाया रहाओ गंदन वैन सुने उरझावे नाम लयत अलकाया निंद चिंद को बोत उमायो बुझी उलटाया पर तान परती निंदा अखाद खाई हरकाया साय धर्म से रुच नहीं आवे सत सुंत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरनाया नानक आए शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाए मोह माया कर बंधे जय जानो सो चीत न आवे अंग बुद्ध पे आंधे मन बैरागी क्यों न आराधे ताज कोठरी माहे तू बसता संग सगल दिखे की व्यदे रखाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन शीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ तन दुर्गादे काम क्रोध अर लोभ मोह ए इंदी रस लपटा दे दीप वारी पुख बिधाते बौर बौर जन माधे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुरमिल सब सुख लादे कहो नानक जिन रैन तिहावो मार काढ़ी सगल उपादे त्यों जप्यो पाई पुरख बिधाते पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुदुख पावे करी मोह तरंग माने फिर बौर बौर पछतावे अंधे चेत हर घर आया तेरा सोदन नेड़े आया रहाओ पलक दृट देख पूलो आक नीम को तुमर जैसा संग विशीर सिंह है रे कैसो की यो पर गृह हो बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाए तिन ही सो संगी सजन सो बैराना सगल संसार हे विद व्याप्यो सो उबरे जिस गुर पूरा कहो नानक पसागर तरयो पय पुनीत शरीरा आसा महला पंजवां दो पदे लोक मानो सोई तुम पेखेओ मुड़ मुग्ध मुकुरानी आप माने कौले बंदे फिर पाछे पछतानी प्रा मेरे सब दे आगे जानी प्रम के मूसे तू राखत परदा पाछे जी की मानी रहाओ जित जित लाए तित लागे क्या को करे परानी बरस लो पार बन स्वामी नानक सद कुरबानी।

निकटी हुए दिखावे। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल हुए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी जो अपने प्रभावे। तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवे। आसा कर ग्यारवां महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नटुआ पे दिखावे बहु विद जैसा है ओ तै सारे। अनक जोन प्रम्यो प्रांपीतर सुखे नहीं परवे सारे। साजन संत हमारे मीता बिन हर हर अनीता रे। सा संग मिल हर गुण गाए क्यों जन्म पदार्थ जी तारे। रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी कहो कौन बे तरिये रे। उमन केर अगा गाकरी गुर शब्दी पार उतरिये रे। खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक क्यों जाना रे। सिमरत नाम निदान निर्मोल मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरे मन वसया। जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग क्यों मन त्रिवताना बौर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा रैन दिन से गावो रे। खिन में थाप्यो थापन हर ते तुझे डरावो रे। रहाओ जब देखो प्रभु अपना स्वामी तो अवरे चीत न पावो रे। नानक दास प्रभ आप पै रहा प्रम पौ मेट लखावो रे। आसा महला पंजवा चार वर्ण चौहा के मर्दन खड़ दर्शन कर तली रे। सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मुए शली रे। जिन मिर मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा एक कली रे। रहाओ वड़ी कोम पस पागे नाही मोहकम फौज हठली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलया सा संगत के चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सुल रस पीकी रे। रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लाई की रे। भिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख नमन ते टारी रे। रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन

भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा मोहल्ला पंजवां आगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सतगुर बख्शिया हर नाम कलयुग उधारिया गुरदेव मालमूत मूर्जे मुगध होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृष्ट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए सजुग त्रेता द्वापर पणिए कलयुग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने हे पर

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नही राजन भागन हुक्म न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे ये मुक्ता ये जूता रखो संत संगाहे।

आया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्स ते अस आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बिधाता नानक कड़ कड़ आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुगिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवां कर चौदवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम सिउ लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवां कर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपत बाजी हार मूका पछतायो मन फोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवां बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद सिउ संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बोध प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां।

दिन नावे मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रवलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास हर विचार आचार परत सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोए हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मेले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख चीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस कीए होमे ग्रास एक थाए कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तनका को कहिए बिन गुर राम नाम कत लइए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मन हारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रखाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन केल वखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सहे समाध परपुर तार रहे मन माघी तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत से लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੈ ਦੁਖ ਮਿੱਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪਵਨੈ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਸੁਧ

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जिदन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक सदका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम न विसर ऐसा ते मन माने आसा महला पहला मनसा मने समायले।

एक गर्भ बन जाएंगे। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय बसाए न पछोताव ही, गुण गां बख्शनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला सच टिके कर आए शब्द उतावला। जय देखा तै सोए अवर न जानिए, गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए। रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई, चले सदार जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई, आपे दे वड्याईया दे तोट न होई।

नाम अमोलह तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई बिर नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सदगुर साधना सेवया हर भगत न पाई हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाए गे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

तन मन शीतल मुख उजले, फिर कै पाए प्यार से सुखाली पिर रवे। हमे तिसना मार कर कृपा कर आया, गुर के हेत अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार। सबे गुने बगसाए ले ओन मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए

ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर रहाओ, गुरमुख आप पछाणिया, तिनी एक मन कहाया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, पर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोख द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो मैं मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की बिननावे शोभ न होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न होए, जिन्नी नाम सारे से मुए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अन दिन नामे लाए, सच कुमावे सच रहे सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमान, नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा शब्दो ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचू आप गया नव मनिया सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सबल तिना का जन्म है तिन मन ने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर पेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के व्यापारिये जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा, भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम वस होमे दुबदा मार, भगतां की जद पत एको नाम है आपे लए सवार, सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत निराली अलहादी जापे गुर विचार, नानक नाम

मानुख मर मर जम में पी मर जम दर होए खुवार आ मिलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजले तिल सच्चे दरबार आसा महला पंजवा अष्टपदिया कार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए इन बिद नगर उठा मेरे भाई दुर्त गया गुर ज्ञान।

हाथ सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जे जिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चिलावो लै लाह गुरम कर आव सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास तनी चितवत अनग प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नाम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चलतो पेकिए नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पहे लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा।

ब्रह्म प्रसिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ, जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए। क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए, तुसी गर्भ के आके भी

आवे सो करी प्यारे, आवर केश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए घर नाओ साई कार कमावनी प्यारे, और मस्तक लेख लिखाए, एक को आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए, संसार कूब ते उधर ले प्यारे, नानक हर शरणाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटिजन साजी, सबना साहेब एक पया, सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़या रहाओ, ईवड़ी आदि पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेख न होई, ऊड़े ओ माता की कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़िया।

आए माया के संगल बंद लया खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया बंधन जाके सब जग बांधया अवरी का नहीं हुकुम पया गगे गोए गाये जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया ताड़ पांडे जिन आवी साजी चाड़ नवागे तई किया कगे काल सेक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे सम कर जाने एन बिद साहेब रम तरह चचे चार वेद जिन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया छे छे शाय।

करो क्या प्राणी, जो किश होआ सो सब चलना, इसे सिरे बोता सुपाव सर्ब निरंतर हरब रहे, टड्डे टाए उसारे आपे यू तुझ भावे तिवे करे, कर कर वेखे हुकम चलाए तिस निस्तारे।

तेत अगम पूरे तो केत बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाई गए राम सच शब्द कमाई गए निज कर जाइए पाइये गुणी निधाना तेत साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना प्रधाना जब तब कर कर संजम थाकी हट निग्रह नहीं पाइये नानक सहज मिले जग जीवन सदगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर तित रतन कणे रे राम कर मजनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रपाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया ताज सच नाम उरतारे होमे लोभ लहर लभता के पाए दीन दयाला नानक गुरसमान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला ओ बन बनो देख रही किरण देख सुभाया राम तिर पवन तुझे किया सब जगत सुभाया राम तेरा सब किया तू थिर थिया तो सुमान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुझ बिन के सालाही अण मंगया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा राम नाम मुक्त ना कोई नानक कह विचारा आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन रता राम प्यारे राम सच साहेब आद पुरख अपरम्परो तारे राम अगम अगोच अपर अपार पार ब्रह्म प्रधानो आजुगा दी है पी होसी अवर चूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे सायर की पुत्री पर घर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख चलत दिखाया जे देखा तै सोई नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सोई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच समाले राम अवगुण मेड़ चले गुण संगम न ले राम अवगुण परख करनी सारी दर सच्चे सचियारो आवन जावन ठाकर खाए गुरमुख तत्व विचारो साजन मीत सुजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगसया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन रता राम मन तन रब रहया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन रता सहज मिले मेलाया सा सवा संता की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगतर ते बैरागी चूके मोह प्यासा नानक होमे मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शांत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारण हार जियो दुख बसारण हार स्वामी कीता जाका होवे कोड़ कुटंतर पापा केरे एक कड़ी में खोवे हंस से हंसा बग से बग्गा घड़कड़ करे विचार जियो तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मान त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ न आवे गुर शब्द कमावे कहो न आवे हार जियो ते कहो न हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ न आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उरतार जियो
ਜਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀਓ ਜਿਨ ਜਗਤਿਓ ਪਾਇਆ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀਓ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ਹਰ ਦਰਗੇ ਪਾਈ ਗੇ ਮਾਨ ਜੀਓ ਹਰ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਜੋ ਨਰ ਏਕ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੇ

न अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किस जानदा, सिर रोग हाथ दीजे, जिना नानक गुरम खिरदा सुध है, हर भगत हर लीजे, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, ले तूर मुख लावा, गुर सिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सदगुर पूजया, तिन हर पूज करावा, गुर सिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, तर सेवे पूरा सदगुरु, पुख जाए लहे मेरी, गुर सिखा की पुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजया, तिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखा मन वाधाइयां, जिन मेरा

प्रसाद हर चरण कम मन बेदे किश आना मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्य हर कड़कड़े डीठा राम राजे हर कड़कड़े डीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण गाया सब दुख मिटाया होमे बिरसी गाठे प्रयो सह सुभाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किश आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रसमाते राम राजे गुरपूरे उपदेसया जीवन गद पाते राम राजे जीवन गद स्वामी अंतर जामी आप लिगे लड़ लाए रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कत हो जाए प्राभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकी मिटे ना दाते जल संग राती माशली नान कर माते चातक जाचे बूंद ज्यों हर प्राण अधारा राम राजे मार्ग

मन ऐसा नहीं करे हो जैसी चातक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करीजे यो मन दीजे अत लाइगे चित मुरारी मान कीजे शरण परीजे दर्शन कौ बलेगारी गुरसो प्रसन्न मिलना विशुन्ने तन देंदी साच सुनेगा कौ नानक संत अनंत ठाकुर के हरसु कीजे नेगा मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो हर जोड़ नानक दान मांगे।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे, मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे, मन लब्द गोपाल ज्ञान हे, जाचक जन राखत मान, प्रमाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मिल नहा सेज सुहंतिया, प्रभ दिष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पय खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय।

पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिले सच, ता तिन्ही सच कमाया। सदगुर मिले सच पाया, जिन कै हिरदे सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी, मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लभी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिये खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख एक गल, होर हो में चखना चाख, महला पहला, लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ पविया ते तो लविया, बहु पेख किया देही दुख दिया, सौवे जिया अपना किया, आनना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया।

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे तीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना सलोक महला पहला दया कपास संतोग सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना यो तुटे ना मल लगे ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया वह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहे नामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामन वटे आए ओए बकरा रिन खाया सब को आखे पाए ओए पुराना सुटिए ती फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूड़ सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी।

पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना क्योंकि उपर किसे न जाना दे के चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे यो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा आपे दे वडे आईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी

गुर चरण लाघम बिनवता पूछत कह जियो पाया कामन काज जग उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो जित

तपी सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तार अंत तउ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु भव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तउ मरना राज भोग अरशद्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तउ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलयो अरहाओ, चूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेरी सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का फल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

आस बड़ पाग हमारा तुर नार मुनजन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पेर हर की भौरिया, हरा बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ, तन पे

गीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजाद कुलखनी सौरे पेय बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरे।

अंतर मैल जे तीर्थ ना आवै तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, नाही राम ए आना। पूजो

अनंत अनंत अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बसा। नीच रूह ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हे उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे।

निमत नाम दे दूध पी आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया। ज्ञान रविदास राम रंग राता क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्र कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोमन लगत है। मान बज क्रम रस कसे लोभाना बिनस गया जाए कहूं समाना। कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने। तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रब हीरे। अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती। जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी। जलत जाल जम फंद परे बिग पर संच परे मन ऐसे। परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया। ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जानिया। तृप्त अगाने मुक्त पये जोत समाए समानी जाके असली प्र पहचानिया। तन्ने तन पाया तरणी तार मिल जन संत सुमानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

निरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सबको दान दे प्रभ ओह मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सोह रहाओ सुख सागर हर भगत है। गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यो चित लावे। अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाही मुए मर जावे। आंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माता पिता भाई सुध बंधप

साध संग नानक दर्स पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रोसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती नीकी ए ठहराई मेर साधु हर्ष।

ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते थाए सा संगत कौ जोई न सके मर मन तो वे पाए आमु आए परे शरण आए गुज पाप को बौध पर जार मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए जन नानक अंग किया प्रभ करत जा के कोट ऐसी दास आए गुजरी महला पंजवा आप जस मिटे होवे जग कीरत दरगह बैसन पाइये जम की त्रास नास होए खिर में सुख से सेती कर जाइये जाते काल न बिरथी जाइये आठ पैर सिमरो।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हिरदे एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी

भगत गोपाल सिमरन मिटद जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुरहृद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत सर्व विद भ्रमते पुकार है अते

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सा संगे दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्र स्वामी ओत पोत प्रव साथ। शरण प्रयो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदिया महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे जो

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच देवनहार। ऐ जी जब तब संजम सच आधार, हर घर नाम दे सुख पाई है तेरी।

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बन आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसै,

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रत्या

नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उर तार। श्लोक महला तीजा, गुरमुख ध्यान सहज तुन उबजे सच नाम चित लाया। गुरमुख अनदन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेख, गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तेमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनु कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा, सतगुर जिन्हें ना से

ऐसा सदगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया। जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन प्रफुल्ला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रैगुण माया वेख भुले, जो देख दीपक पतंग पचाया। पंडित फुल फुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया। दूजे पाए पड़े नित बिखया, नावो दिए खुआया। जोगी जंगम सुनयासी फुले, ओना अहंकार बो गर्भ वधाया। साधन भोजन ना ले सद पिखया, मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किस नू आग सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा। ए जम की सरकार है, इन्ना उपर।

पौड़ी ए मना अत लोभी नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दहत फिराता अगे नाओ जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हरसना चखे फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चाखे।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन की कटिए मैल सत्संग उठिया जन मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा बार विडानड़े होमस तुमस कूका पईया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी सावेला परवान जित सतगुर फेटिया होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया परख खजाने पाए से बौड़ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा विशोहे जंबूर खवे न वंजन गाखड़े जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच। महला पंजवा जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद दे कुदरत तेरिया सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया तेरे हथ निदान पावे तिह देह जिसनु होए दयाल हर नाम से लेह अगम अगोचर बेअंत।

मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदियां खांदियां मोह कठा पए नंदियां सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी।

सारो दिन डोलत बन मैया, अजो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो न मानो कियो अपनो पई है, दुख सुख करत महाप्रभुडो अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभिसरयो यो अवसर कद पई है, प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गात बिन।

कह किन बूझिए रमैया आकुल रीबाई रहाओ क्यों आका से पंखी अलो खोई क्यों ना जाई ज्यों जल माजे माचलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यों आका से कड़ू अलो मृत्यु ना परया नामे ते स्वामी बीठ लो जिन तीन जरया गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद दूता बशरे थनों बिटारे हो फूल पावर जल मीन बगारे हो माई गोविंद पूजा कहां ले चिरावो आवर ना फूल अनूप ना पावो रखाओ मैला गर बेरे गए कोयंगा बेख अमृत बसे एक संगा तूप दीप नहीं बेदे बसा कैसे पूज करे तेरी दासा।

गोविंदेत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सप्तं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सत।